0: प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री राम राम राम
1: प्रेम मुदित मन से कहो।

साईराम, यू आर लिसनिंग टू ए डिवाइन डिस्कोर्स डिलीवर्ड बाय भगवान बाबा ऑन द 9th ऑफ जुलाई 1996।